0: वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर फ्री इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रिपिङ टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784954 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाइफ
1: मध्यपश्चिम जान चेक यति बेला दिउँसोको एक बजेको छ।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए
1: मध्य पश्चिम जायंट चेक यति बेला दिउँसोको दुई बजेको छ।

बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: मध्य पश्चिम जांच चेक यति बेला बेलुकीको 5 बजेको छ।

0: बाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे सूचना
2: वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा महिला कैंसर रोग सर्जन बीपी कोइराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल चितौन में पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रवीण योगी को हाई 15 सड़क विभाग रोड में दिव्य फार्मेसी में बिरामी को चेक जांच गरिने हुँदा समयमै नाम दर्ता कराई विशेषज्ञ सेवा को लाभ लिनुहोस् र आफ्नो रोग को पूर्ण निदान गर्नुहोस्
1: विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा दिइने सेवाहरू
3: महिनावारी में समस्या महिनावारी रोकिनु
1: समस्या
3: पाठेघर में समस्या पाठेघर खस्ने को समस्या
1: पाठेघर में मासु पलाउने
3: निसन्तान महिला को चेक जांच
1: स्तन कैंसर पाठेघर में कैंसर भय न भय को चेक जांच लगायत का महिला संबंधी संपूर्ण रोग को आधुनिक मेसिन द्वारा चेक जांच गरिनुका साथै उचित परामर्श का लागि सम्पर्क गर्नुहोला
4: बिरामी जाँच्ने मिति यही श्रावण 29 गते शुक्रबार
1: सम्पर्क दिव्य फार्मेसी घोराई 15 सड़क विभाग रोड दाङ फोन नम्बर 082-595-410 मोबाइल नम्बर 98-478-28913 र 98095-12871
3: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ।

0: अखरू, कोकोनट, सोकोनट, वीटा मिल्क, बटर फ्राइड, क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट।
1: हेरा हेरा हेरा, यो हो हाम्रो चोइस, कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस।
0: अद्गुरी।

0: छट्टी
1: हो
0: गाँव गया तीन छोड़
1: तीन
0: तीन छोड़
1: सिख पढ़ाई कल कल से कोई
0: हमने
1: अब आपने खेती पाती कर लग किसान घर में जन्म हुईलक ना ऊ रात्रि स्कूल में पढ़ने जाए थी तो दिवस को समय में काम करती क्या काम करती आपने
0: अब हम दूसरे वहाँ जाए के बिहान ये या दिन के गोला दिन संगे भात खा के पढ़ जाए पढ़ने के लिए कुछ भी निकल मस्त वस्ते सीख ली पढ़ल
1: खेती किसानी अपन केल कली की कमिया फिर बैठी पड़ी
0: कहाँ कमिया फिर बैठली
1: कहाँ बैठी
0: कमिया गाँव में बैठली
1: कई वर्ष को उमेर हुई लग कमिया बैठल
0: कमिया बैठने हम पंद्रह सौ में कमिया बैठ न कमिया बैठना कुछ न घरे
1: कमिया बैठल तो वर्ष दिन कमिया कर लग कतर ज्याला दिए था
0: कटरा ज्यादा दे आठ मुड़ी धान ज्याला दे है आठ मुड़ी उठा बाली दे है
1: आठ मुड़ी बाली अन्न दे था
0: हाँ।
1: और
0: मसूरा छ मुड़ी
1: छ मुड़ी छ मुड़ी मसूरा

0: biasa saya kalau harus baybang sama pulih angkut biasa kau
1: baybang
0: baybang
1: baybang katrakum pay thi we we samay apni biasa kau lakta dhan magai katrak bau
0: pada ha u zaman naga ha rupiah pasi magai rupiah pasi magai ani ke धान आप दूरी पांच पासी का है दूरी के पांच पासी के है
1: दूरी के पांच पासी है आपने किन्हें अब समय ना
0: हाँ किन वो किन
1: अब कमें कतरक बस वर्ष बची आपने
0: कमें आता है एक दो वर्ष बची
1: एक दो वर्ष जोर वर्ष करेंगे भाई
0: कैसे मुझे एक दो वर्ष बची है मुझे ये जोर घर में खेती वालों हो जाओ फटे करी दूसरों आधा फटे से मैं से धान निवाल बरसात नहीं करो
1: वो ये पहले बरसात हुई कल कल से फिर मॉल रासायनिक मॉल नहीं आया था ना रासायनिक मॉल नहीं आए
0: तो गई भैंसी तुम्हारे आप गई भैंसी जेठे को ले रहे आप दिहों फावट का हो लेकिन वो दिहों से बुदा गोस्त
1: जो नहीं पूछता छेता में नहीं पूछा
0: ना खेती नहीं हो जाए मॉल नहीं पाल गोस्त कर
1: ना तो गई है भैंसी मॉल लग डायरी कल कल सीधा वहीं पर
0: हाँ गाय उधर गुरु भैंस छेड़ी भेड़ी पलवा में इधर मॉल फागत लेकिन अब असली ज़बाना मुझे जिलों फिर निजन उस आगे इधर बाना फिर करो मनी कर दो निकलियो मंडी दे उस कहाँ देना कबूल
1: आगे ने सरता रेडी मध्य पश्चिम एकान्नबे तो बोले चार मेगाहर्ट्ज़ प्रसारी देश नए सरकार कार्यक्रम में बोले रहेगा छोंग आज का हमरा अतिथि उन्होंने जो घोराई दुई सुखी नहीं क्या सुवाराम चौधरी वहाँ कुछ बात बताई लगो ना वो ये पहले जमाना खेतीपाती प्रमुख पेशा नहीं खेतीपाती हुई था ना वो ये प्रमुख पेशा खेतीपाती कर लग फिर खाना नहीं पुकती है री खाना नहीं पुकता
0: खाए नहीं पाएगा ओ मार के ना हो मार खा के यार मार ये दूसरों के साथ कुल से वो सब बंद है दूसरे का
2: अब हम कुल आप खेती करना उसे दुख
1: रहा पहला जमाना तो दुख था अब गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा तो दुख का जमाना हुई ना पहला जमाना र आपको जमाना में फर्क क्या था
0: आधा ही बहुत फर्क था आधा लोग जमाना फर्क हुआ अब मजा मजा लगेगा मजा मजा खाना करते न्यू हिल से तो बेसाई ना अब सस्ता मिल अब गाड़ी तो जमाना से साहू साबू हन उजा करना हो हजू मह दो अटा अटा मुरी धान अटा अटा पाची धान दो हमरे को हर दिन जाजा कबो हमरे के देवी धंधा के देवी ये उपेशा बहुता मूली छुट्टबा और उजा वो वापस लाग बेट बिगारी के देना
1: चाहिए उसे करेगा आजकल तो बेट बिगारी करे नहीं पड़ना
0: नहीं पड़ना आजकल तो बेट बिगारी हो या तो कुछ नहीं हो
1: अपन व्यक्तिगत जीवन अपन व्यक्तिगत जीवन पहला जून चाहिए ये वड़ा रहती घर में पैदा हुई ना जन्म हुई तब से दुखों सुखों करके अब तक तो आगे आजकल तो अपन प्रगति तो हुई लोग अपन क्वेश्चन बा आजकल
0: आजकल पहले मजा बा आजकल जब मैं अपन पौड़ों के लिए एक रखनो संसार हरे इलिसिफ़ है मैं देखा देखो ये मौर ऐसे प्रगति कर लखो मौर मेहनत कर लखो ऐसे मैं ऐसे करनो खेती पाते अपना कि खेती पाते थे वो हमलोग नहीं कहीं के थे और जहाँ ढाबे के थे वो फिर खाई पी गोता
1: अजय देखे में खाई पी
0: आ ढाबे के थे खाई
1: कतरक जगह किन लगा आपने जोर लगा
0: आपने जगह पहले तो दानांत्र है आप दोस्त में आपन पवन लेके 300 मीटर में लग मैं खोलोट ढलती हूँ खोलोट ढल गा के खेती पाजी मजा बना खेती पाजी मजा बना एकदम सब कुछ
1: कई मेरी धन बनाई थी आपने
0: आसान मुरी वो तो हम ठोकरे में उसको डर से था वो फोर ढेरों लेकिन रह सत्ताईस बोरा लेकिन रह ये मुरी हिंग के दाना खेना बोरा के सत्ताईस बोरा ले अजर
1: अजर और तेरा सत्ताईस बोरा लेकर कल से आपन लाख फिर सत्ताईस बोरा आगे
0: सत्ताईस बोरा ले
2: हमें फिर
1: खाना पुकी आपन शादी शुदा कर लगो आपने कई वर्षों में मेरे माँ भोज के लिए
0: मैंने कल 10-12 वर्षों में बात के लिए छुट्टी मत दे तेरे

आकाश गंगा को अवतरण, हिमाली जलधारा को आकर्षण, जनदैला में ज्ञान धारा को प्रसारण, कार्यक्रम त्रिवेणी, अन्वेषण का शिखर, खोज का गल्छी र यात्रा का पाइला, कार्यक्रम त्रिवेणी।

आचार छैन न छ शुद्ध विचार काही सदमी समाज हुनगो सब जाही ताही आका समय अलपिने मतिलाई छोड़ सद्धर्म वृक्ष अवनी तल आई गोड़। कवि धरणीधर कोइराला। नमस्कार। प्रकृति का प्रसाद शब्द शैली र सन्देश का शिक्षा संचारण गर्ने प्रस्तुति कार्यक्रम त्रिवेणी में हामी सारा श्रोतालाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्रकृतिका विविध प्रसंगहरू कोट्याउने प्रस्तुति कार्यक्रम त्रिवेणीमा आज हामी मानिसको जीवन गतिका बारेमा केही शब्द प्रसार गर्दैछौं। आरम्भमा यो सांगीतिक सुसाई सुनौ अनि शब्द जात्राको यात्रामा निस्कौं।

वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसार 25 वर्षसम्म को ब्रह्मचर्य काल, 50 वर्षसम्म को गृहस्थाश्रम धर्म, 75 वर्षसम्म को वृद्धाश्रम अवस्था र 75 वर्ष पछि 100 वर्षसम्म को वानप्रस्थाश्रम धर्म को उमेर उल्लेख गर्दछ। 75 वर्षसम्म घरमा अभिभावक बनेर सन्तानलाई जीवन भोगाईका सारा अनुभव शिक्षा दिएपछि 75 वर्षपछि घरै छाडेर भगवान भक्तिमा वन उपवन घाट मठ मन्दिर धाम जाने समय हो।